दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: चीटी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sada Ali Khan in Urda Teer.
3: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
4: Desh bhakti to yaad aa gayi.
5: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
2: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
6: Ye border chal rahi hai.
2: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.
7: Suno ji, gaddi Akshara Jewelers wal le lo.
8: O jo hukam meri sarkar.
7: O aa kidhar? Harry's Park wal jana. Tusi aa kithe ja rahe ho?
8: Akshara Jewelers di dooji location.
7: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
8: आहो जी आहो,
7: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
9: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिना च भी तुहाडे अपनिया दा साथ नहीं पाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
10: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
11: रेडियो हांजी 1674।
12: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur. I'm a Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
13: Bale bale bale.
12: Bale bale bale.
14: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
15: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

0: इंडिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME Advisor.
1: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sada Ali Khan in Urda Teer.
2: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
3: Desh bhakti to yaad aa gayi.
4: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
1: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
5: Ye border chal rahi hai.
1: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
6: This station is now the ultimate power in the universe.
7: Radio Haji 1674.
0: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ
8: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ
0: ਬੈਸਟੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ ਹਾਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME Advisor.
9: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
10: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
9: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
10: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमिग्रेशन com.au
11: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
12: और जो हुकम मेरी सरकार
11: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
12: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
11: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
12: आहो जी आहो
11: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच
13: दिवाली रोशनी का त्योहार तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद रिवाजों के रंग खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी चना मसाला पालक पनीर किचन किंग दाल मसाला चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ

0: तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने इक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ
4: ਆ ਜਾ ਪਿਓਰ ਕੀ ਹੋਡੀ
5: ਦਿਲ ਬੋਲੇ ਤੋ
6: ਹਾਟ ਹਾਟ
7: ਹਵਾ ਯਾਰ ਸੌਦਾ ਸੌਦਾ
6: ਓਹੋ
4: ਦੋਨੋਂ ਡੀਲ ਕਰਸੀ
6: ਟਾਈਟ ਵੈਰੀ ਟਾਈਟ

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

आए गए। दोपहर दे वेले जिहड़े 8 दे करीब एक्टिविस्ट सी ओह पार्लीमेंट दे विच दाखल भी हुंदे ने और सरकार नूं क्लाइमेट विरोधी दसदे होए प्रदर्शन करन लगदे ने, जिस दे विच नैट जीरो कार्बन एमिशन दे टीचे दी वी गल कीती गई है। इस दरम्यान जिहड़े NSW पार्लीमेंट दे स्पीकर सी ग्रैग पाइपर, उन्होंने कार्रवाई नूं थोड़ी देर दे लई रोकिया। इंडिपेंडेंट MP माइकल रीगन, लेबर पार्टी दे MP डेविड सलीबा जिहड़े सी उन्होंने भाषण के दरम्यान रुक रुक के नारेबाजी होंदी रही। खबरां दे अज दे इस सैगमेंट दे विच फिलहाल इन्ना ही, दिओ इजाजत, धन्नवाद। सुनते रहो रेडियो, हाँ जी 1674 AM।

0: रेडियो हाँ जी 1674 AM पे मैं गौतम कपिल और आप सुन रहे हैं आज एक खास मुलाकात। इसमें दो खास मेहमान हमारे साथ रेडियो स्टूडियो में मौजूद हैं, संजीव जी और योगेश खट्टर जी। सब जानते ही हैं ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, स्पेशली इंडियन कम्युनिटी में, पर कुछ खास होने जा रहा है आने वाले दिनों में। बहुत से इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे ही त्योहारों का मौसम आता है अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं, पर सिडनी में ये जो दो इवेंट्स होने जा रहे हैं ये थोड़े खास हैं। सबसे पहले तो संजीव भाई, योगेश जी, वेलकम सर, नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: नमस्कार जी,
3: जय माता दी,
0: जय माता दी। नवरात्रे चल रहे हैं तो जय माता दी।
3: बिल्कुल।
0: और दो अलग अलग विषय हैं, पर हम अगर आप सुन रहे होंगे तो इस पॉडकास्ट के दो अलग अलग पार्ट्स आप सुन सकोगे बाद में, लेटर ऑन। पर पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, 1 नवंबर संजीव भाई, हरियाणा डे, और सुना है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है।
1: सभी को मेरी राम राम। और 1 नवंबर को हम बैठक का उद्घाटन कर रहे हैं, इनोग्रेशन कर रहे हैं, और आप सभी को आमंत्रित है। ये पैरामेटा में 12 पालमर स्ट्रीट पैरामेटा है, और 10:30 बजे से लेके 2 बजे तक का टाइमिंग है, और उसके अंदर हवन होगा, कल्चरल प्रोग्राम होगा, ठीक है जी, और स्पेशल गेस्ट भी हैं। और उस दिन ये एक बैठक हमने इनिशिएटिव लिया है सीनियर सिटीजन के लिए, और सीनियर सिटीजन बैठने की एक जगह हमने उनको डेफिनेटली दे रहे हैं, एवरीडे वो ओपन होगी, और वो कोई भी हमारे पेरेंट्स हो गए या कोई भी सीनियर सिटीजन है वो वहाँ पर आए, बैठें और अपना एंजॉय करें,
0: बातें करें,
1: ठीक है जी। उनके लिए हम एक्टिविटीज भी वहाँ पर रखेंगे, ठीक है जी, जिस तरह वो प्लेइंग कार्ड्स हो गए, कैरम बोर्ड हो गया, चेस हो गई, ठीक है जी, हुक्के का भी इंतजाम अभी ऑफिशियली नहीं रखा है, पर उसको भी हम ट्राई,
0: नॉन टोबैको हुक्का है वैसे, कुछ ना हो जाए।
1: एक हमने एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके कम्युनिटी के लिए एक जगह दे दी है बैठने के लिए, तो वो बहुत ही हमारे लिए, हमारी जितने भी AISC कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है, और हम पिछले 1 साल से मोर देन 1 ईयर वी आर वर्किंग हार्ड, ठीक है जी, और आज 1 नवंबर को इस चीज का हम उद्घाटन कर रहे हैं, और आप सभी को विनती है प्लीज आप वहां पर आए और इसको सक्सेस बनाएं, ठीक है जी।
0: AISC सुनने में लगता है ऑल इंडिया हरियाणा कुछ,
1: ऑस्ट्रेलियन इंडियन हरियाणा,
0: ऑस्ट्रेलियन इंडियन
1: हरियाणवी कंपनी जी,
0: ठीक है। योगेश जी, आई नो के यू बीन रिप्रेजेंटिंग हरियाणा कम्युनिटी काफी लंबे टाइम से, और बहुत सारे इवेंट्स भी चल रहे हैं, इसके बारे में शायद पहले भी कुछ महीने पहले बात की थी आपने
3: जी,
0: क्या इसके पीछे सोच क्या थी कि सीनियर सिटीजन्स को एक साथ लेकर आना है, या फिर आपके तरफ कुछ फीडबैक्स आ रहे थे कि बुजुर्ग आ जाते हैं
3: जी,
0: पर यहाँ पर फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आइसोलेटेड फील करते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो हम ये नवरात्रि का जो समय रहता है उसमें हम सब माता की जो है वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं
0: जी,
3: तो मेरा जो सोचना है कि सबसे पहली जो पूजा हमारी माता की जो होती है, जो घरों में है, उनका आदर सत्कार करना जो है वो हमारा फर्ज है।
0: करेक्ट।
3: तो अक्सर हम यहाँ आके देखते हैं कि जो हमारे माता पिता हैं उनके लिए हमारे पास समय नहीं मिलता है, हम अपने अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो उनको समय नहीं दे पाते, जिसकी वजह से एक यहाँ पे मेंटल हेल्थ का इश्यू जो है वो बहुत चल रहा है।
0: राइट।
3: तो थोड़ा सा अपना योगदान जो है, जब हम डिस्कस कर रहे थे तो धन्यवाद देते हैं संजीव भाई का कि जिन्होंने आगे बढ़कर ये इनिशिएटिव लिया, उनको उनको भी बात समझ में आई कि हमें जो है जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो असली जो हमारे माता पिता साथ में रह रहे हैं, तो उनके लिए जो है हमारा कुछ करना जो है बहुत जरूरी है।
0: करेक्ट।
3: तो उन्होंने अपना जो है पूरा का जो पूरा जो बिल्डिंग थी,
0: अच्छा,
3: वो उसके लिए समर्पित कर दी कि भाई मेरी तरफ से तो ये योगदान है, तो उसके लिए जो है मतलब मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि समाज के लिए जो है इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया। और फिर जो है हम लोग इसीलिए जो बच्चों को यही कहना चाहते हैं सबसे पहले कि आप अपने माँ बाप को घर में टाइम दीजिए, आप नहीं दे सकते, अपने छोटे जो बच्चे हैं उनको जो है बोलिए, उनके साथ बात करें, और कुछ नहीं तो हंसी मजाक करें, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो उसके लिए बैठक हमने बनाई है, आप अपने माँ बाप के साथ उनको वहां छोड़ जाइए, अपने छोटे बच्चे जो हैं उनको बोलिए कि जाइए आप दादा दादी नाना नानी जो है वहां पे बैठिए छोड़ जाइए, और जो वो वहां पे जो माहौल मिलेगा वो आपको हरियाणा वाला मिलेगा। आपको वहाँ चाय कॉफी की पूरी व्यवस्था है, आप गेम्स खेल सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, चुटकुले सुना सकते हैं, और कैरोके का भी इंतजाम है। आप अपना जो पुराना जो आपने कभी कॉलेज टाइम में जो आपके जो स्किल्स थे दोबारा से जो है आप अपनी बातचीत से अपने यारों दोस्तों से वो आप शेयर कर सकते हैं। तो ये समाज के लिए जो है बहुत जरूरी है, हेल्दी है। तो यही सोच से हमने ये बैठक जो है वो उसका जो अभी 1 नवंबर को जो है मुहूर्त करने वाले हैं, तो आप सभी से निवेदन है आप आइए और देखिए और सहयोग कीजिए।
0: राइट, कहाँ संजीव भाई पैरामेटा में एग्जैक्टली कहाँ पर ये अगर लैंडमार्क कुछ बता दें?
1: 12 पाल्मर स्ट्रीट पैरामेटा,
0: किसके अगल बगल?
1: ये अपना विक्टोरिया रोड और चर्च स्ट्रीट के ट्रैम है वहाँ पर, ट्रैम बिल्कुल नेक्स्ट टू द ट्रैम है, और अपना 80 स्ट्रीट चर्च स्ट्रीट है।
0: राइट,
1: ठीक है, ये विक्टोरिया रोड और जस्ट ओनली आई थिंक 100-200 मीटर।
0: सो ट्रेन स्टेशन से भी आ सकते हैं पेरेंट्स और फिर आगे लाइट रेल पकड़ कर के भी?
1: हाँ जी, हाँ जी, पैरामेटा स्टेशन से भी ज्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 10-12 मिनट वॉक है।
0: राइट,
1: और चर्च स्ट्रीट ईटरी भी अगर बुजुर्गों को बैठ के खाना है बाहर जाके खाना तो ईटरी स्ट्रीट भी है, रिवर आई थिंक रिवर साइड थिएटर भी है, ये ना रिवर पैरामेटा रिवर भी है,
0: अच्छी लोकेशन है।
1: हाँ, लोकेशन पार्क भी है नेक्स्ट डोर, जस्ट पार्क भी है, ओपन पार्क,
0: अल्फर्ट पार्क है।
1: हाँ जी,
0: राइट,
1: तो दे कैन सिट ओवर देयर।
0: कॉन्सेप्ट कैसे ये काम करेगा, मतलब मैं अगर समझना चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स हैं वो कितने बजे से कितने बजे तक वो खुला है, कैसे वहाँ पर पहुँच सकते हैं, कौन कुछ ऐसे कुछ इनविटेशन बेस्ड है, फ्री है एक्टिविटीज, ये सारा थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर सके जिनके घरों में पेरेंट्स बैठे हैं।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो अब ये हम ओपनिंग करेंगे 9:00 इवनिंग 6:00 तक,
0: ओके,
1: और मे बी 7:00
0: होगा वहाँ पर।
1: हाँ, वहाँ पर हमारा फोन नंबर होगा, फोन नंबर है और हमसे वो कॉन्टेक्ट करेंगे। और एक उसके बाद क्या चीज है कि हमारे कम्युनिटी के अंदर से ही जो सीनियर मेंबर्स हैं दे आर टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी कि वो उसको खोलेंगे बंद करेंगे या उस चीज का प्रोसेस है कि आप वहां पर क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। जिस तरह रजिस्ट्रेशन भी वहां पर होगी, ठीक है, जो भी आए अपना डिटेल वहां पर लिखे तो हमें पता लगे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है ना, तो फॉर द सेफ्टी ऑफ द सीनियर सिटीजन।
0: राइट, राइट, ठीक है। और ये AIRC परीक्षा जी भी हैं, वैसे वो माइक पर नहीं है, कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्थापित हुई और इसमें कैसे ये कमेटी काम कर रही?
1: परीक्षा जी का बहुत बड़ा रोल है, परीक्षा जी ही ने ही ये सारी संस्था

0: और इनको शायद उस चीज़ का मालूम था, तो इन्होंने अपना रविंदर रेड्डू जी और नहीं रविंदर गणगस जी, परीक्षित रेड्डू जी या रविंदर रविंदर गणगस जी और अरुणेश सेठी जी को लेके ये आए और कहते कि हम ऑस्ट्रेलियन इंडियन हरियाणवी कम्युनिटी फॉर्म करते हैं और देन नरेश जी आल्सो ज्वाइन, ठीक है जी। तो हम पाँच जने फाउंडर मेम्बर थे और फिर ये एक नीम रखी गई और उसका सबसे पहला हमारा ये काम है कि हम एक सीनियर सिटीजन के लिए कुछ ना कुछ करें और ये हमारा आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी एक कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर हम इसको सक्सेस करते हैं तो मतलब बहुत टाइम लगा इसका डीए सीसी ओसी प्रोसेस लेने में और इट्स टेक मोर देन वन ईयर, ठीक है जी। तो बहुत लंबा प्रोसेस था और हम इस चीज में अब कामयाब हो गए हैं, तो हम सारे सीनियर सिटीजन को रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आप वहां पर आए और बैठे। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम पूछेंगे कम्युनिटी से कि हम क्या कर सकें और जो हमारा इनिशिएटिव है कि नेक्स्ट स्टेप हम करें वो है कि एआईएससी मोर्चरी खोल लीजिए अपने ना, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी सीनियर कोई भी है जो यहाँ से
1: माइग्रेंट थी सारे,
0: हाँ जो चले जाते हैं इस संसार से, उनके लिए बहुत हार्ड प्रोसेस है ये मोर्चरी का ना। तो हमारा एआईएससी का सेकेंड स्टेप जो मोर्चरी के लिए है और ये हमारा फर्स्ट इनिशियल था सीनियर सिटीजन के लिए और अब सेकंड हम जस्ट हम वर्किंग ऑन कि मोर्चरी किस तरह यहाँ पर एस्टेब्लिश की जाए और उसको किस तरह कम्युनिटी के लिए करा जाए।
1: राइट राइट, नो ये डेफिनेटली, और इनफैक्ट योगेश जी शायद हम बात भी किसी दिन कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि ये भी होना चाहिए कि एज केयर के बारे में भी आप सोच रहे थे कि कुछ इस, क्योंकि यहाँ के जो है वो उस कल्चर के अकॉर्डिंग है, उसमें हमारे पेरेंट्स फिट नहीं बैठते
2: बिल्कुल,
1: तो ये हो जाता है कि आगे चल करके आगे 5-10-15 सालों में इस तरीके की जरूरत महसूस होगी
2: बिल्कुल।
1: पर ये जो बैठक का कॉन्सेप्ट है इसमें जो बुजुर्ग हैं उसमें क्या मल्टी कल्चरल कम्युनिटी भी फिट करने का सोचते
2: हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ये मल्टी कल्चरल जो है जगह है सबके लिए है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं कहीं से भी हैं बिलोंग करते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन हैं, आप सिटीजन हैं, आप पीआर पे हैं, आप घूमने आए हुए हैं, सबके लिए है। तो क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो कहीं एक बुजुर्ग की सेवा करना जो है ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं है, तो इंसान मतलब इंसान, तो ये इंसानियत के नाते जो ये प्रोजेक्ट जो है वो चलेगा, तो उसमें सारे जो लोग हैं हमारे इंटरनेशनल मल्टीकल्चरल जो है हम ऑस्ट्रेलिया में रह के उसका जो है हम प्रचार कर रहे हैं, तो हम ग्राउंड पे भी जो है वही काम करेंगे जो हम बात करते हैं।
1: राइट, और इनके क्योंकि कोई भी संस्था जब होती है तो उसके ऑनगोइंग खर्चे भी होते हैं
2: जी,
1: तो आप में से कोई भी अगर बताना चाहे कि कैसे इनके जो एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे फिर, या वॉलंटियर्स भी आप देख रहे हो या उसमें?
2: बिल्कुल जी, हम देखिए सबसे सहयोग चाहते हैं कि आप अपना जो भी योगदान जो है छोटा बड़ा करना चाहें, क्योंकि ये समाज का कार्य है, आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। अभी ठीक है, हमने जिम्मेदारी ली है सबने, हम जरूर जो है उसका पालन करेंगे, बट आप सबसे भी जो है वो निवेदन है कि आप भी जो भी अपना योगदान देना चाहें, आप जो है परीक्षित जी से जो है आप करिए और संजीव जी से जो है कॉन्टेक्ट कीजिए और अपना जो भी योगदान दे सकते हैं छोटा बड़ा हम जो है वो आमंत्रित करते हैं आपको। सबसे पहले तो आप आइए, वो एक बहुत जरूरी है, आप आके देखिए, अपना फीडबैक दीजिए कि हमें क्या सुधार करने हैं, हमें और क्या जो है एक्टिविटीज उसमें एड ऑन कर सकते हैं और क्या सेवाएं जो है हम अपना दे सकते हैं।
1: राइट,
2: तो वो सबसे पहले आपका योगदान जो है हमें चाहिए।
1: राइट,
2: उसके बाद आप तन मन धन से जुड़िए।
1: राइट,
2: जो भी आप सहयोग करना चाहें हम खुले दिल से जो है वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि बगैर आपकी मदद से हम ये काम नहीं कर पाएंगे।
1: ऑफकोर्स संजीव भाई, लास्ट में जैसे योगेश जी ने बताया कि ऑनगोइंग एक चीज है, उसको चलाने में बहुत से लोगों का साथ चाहिए, बट 1 नवंबर जो ओपनिंग है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि कौन कौन कैसे आप कोई कल्चरल एक्टिविटी भी आपने शायद ऑर्गेनाइज कर रखी है, कितने बजे से कितने बजे तक वो चलना है प्रोग्राम?
0: हाँ जी, ये 10:30 to 2:00 है और इसके अंदर मॉर्निंग 10:30 to 11:00 मीट एंड ग्रीट है, 11 to 12 हवन है वहाँ पर, और फिर 12 to 1:00 तक अपने जो गेस्ट हैं स्पीच है और क्या कहते हैं साथ में मीट एंड ग्रीट लगा लें गेस्ट के साथ, और फिर उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम है 1 to 2 ठीक है जी। और सो फार उसके बीच में 12 o'clock लंच स्टार्ट हो जाएगा, मॉर्निंग 10:30 to 12 o'clock स्नैक्स हैं। और क्या कहते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है। मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपने योगेश जी ने कह ही दिया था उसके अंदर, हमारी इस AIC का नेम है ऑस्ट्रेलियन इंडियन हरियाणवी कम्युनिटी। वो हरियाणवी इसलिए है क्योंकि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमने हरियाणवी रखा है
1: नाम।
0: और पर यहाँ पर चाहे वो ऑस्ट्रेलियन है ठीक है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो मतलब इंडिया से कहीं से भी है, यहाँ पर हर एक कोई वेलकम है जी। ये कोई एक इंडिविजुअल के लिए बैठक नहीं है, ये सबके लिए बैठक है,
1: एक कम्युनिटी स्पेस।
0: हाँ जी, कम्युनिटी है। और ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी का मतलब हम सब ठीक है जी। हमने इनिशिएटिव लिया है, अब कोई भी आए उसके अंदर ज्वाइन करे और उस चीज को अगर वो किसी तरह भी चाहता है कि इसको किस तरह आगे लेके जाना है, वो हम सब उसका वेलकम करेंगे जी।
1: वैसे ही कोई AIHC के कुछ अते पते जो सोशल मीडिया पे होते हैं, वो फेसबुक पेज ऐसा कुछ आपका कोई लोग कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे?
0: हमारा AIHC का फेसबुक पेज है, प्लीज आप उसको लाइक करें। AIHC का फेसबुक पेज है, प्लीज आप उसको लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें और उसके अंदर आप जाके जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं उसको आप देखें ठीक है। और सभी से निवेदन है, प्लीज आप 12 पालमर स्ट्रीट पैरामेटा आप 1 नवंबर को जरूर आए।
1: ऑफ कोर्स, और ये एक ऐसा इनिशिएटिव जिसकी शायद परिकल्पना बहुत लोगों ने की, पर एक कम्युनिटी स्पेस जो AIHC दे रही है और जो ओकेशन है 1 नवंबर का, उसके ऊपर ज़रूर आप ओपनिंग सेरेमनी में भी आएँ, अदरवाइज भी आप अपने बुजुर्गों को पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा और साथ में भी ट्रैवल करके वहाँ पर पहुँचें और देखें कि कैसे कम्युनिटी स्पेस में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारा रेडियो तक बहुत से पेरेंट्स जब सुनते हैं उनकी यही कंप्लेंट आती है कि मन नहीं लगा
2: जी, बिल्कुल
1: 2-3 महीने रुके बच्चों के साथ, मन नहीं लगा थोड़ा वहां पर, वो जो अपना एक कनेक्शन फील करते हैं अपनी कंट्री में, वो यहाँ पर आकर के थोड़ा एलियन फील करते हैं, तो वो एक चीज दूर कर दी है आपने। बट थैंक यू सो मच और गुड लक टू यू बोथ
2: जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद गौतम जी आपका, और आप इसी तरह से जो है समाज की सेवा करते हैं और मौका देते हैं अपनी बात रखने का, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू योगेश,
0: थैंक यू
1: संजीव भाई, बहुत शुक्रिया। रेडियो हाँ जी 1674 AM पर इस इंटरव्यू में इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।

मैडम नूर जहां था, बड़ा पॉपुलर गाना है, आए हो अभी। वैसे मैं लग गया सी गाना जिन्ना ओरिजिनल वधिया सी, उन्ना ही मैं लग गया कि शायद होर वधिया कर देंगे, बट हर जगह नहीं, कई बार तीर फोके भी निकल जाते हैं। लो जी फिर इस तो बाद हूँ आप ब्रेक लैके तो थोड़ा सिडनी मेलबर्न स्टूडियो जड़े ने उन्हों अड अड फ्रीकुएंसियां हो जाएगियाँ, तो सानू सिर्फ सिडनी स्टूडियो तो सुनते रहो क्योंकि इनसाइट रिपोर्ट लैके आनी है थोड़े तक। दो तीन अलग अलग रिपोर्टा है, अमेरिका की रिपोर्ट है तो प्रवासियों के नाल जुड़ी हुई एक रिपोर्ट हैगी है। अंकड़े ने कुछ खबरों के जीता करता हूँ पर बहुत लंबिया फिर चलिया जाने खबर कई बार, सो इस करके न्यूज़ तो हट के वो शो हैगा इनसाइट रिपोर्ट। अगे चल के वो भी गलबात करते हैं, चाह के प्याले नाल रखो बस।

अपराध हो रहे ने, चाहे वह रेसिजम है उन्होंने नाल, चाहे उन्होंने नाल धक्का है, चाहे कोई फिजिकल असॉल्ट है, दे आर टारगेट। ये कोई शक नहीं है कि उन्होंने लगातार टारगेट बनाया जा रहा है। एंड दैट्स नॉट ओनली इन आस्ट्रेलिया या अमेरिका, ये बहुत वाइड स्प्रैड एरीना है, एक एक किस्म का पूरी दुनिया के फैलिया हुआ रोग है कि तुसी जिथों के होंने हो तो कोई होर उतों का नहीं है तो तुसी उन्हों किस नज़र दे नाल देखते हो। वो लोग जिहड़े वाइट स्किन नहीं है, वह आस्ट्रेलियन नहीं हो सकते, ब्राउन स्किन या ब्लैक स्किन जिहड़े ने आस्ट्रेलिया के नहीं हो सकते। इस किस्म की सोच अमेरिका दे विच भी इदां ही, अज की तरीक च भी जिहड़े गैर गोरे है ने वो लोग उत्थे स्ट्रगल करते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड का केस तुसी भुल गए होंगे शायद, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर करके एक उत्थे बहुत बड़ा ट्रेंड तुरिया सीगा कि काले लोगों के नाल पुलिस उत्थे किवें बर्ताव करती हैगी। सो ये जिहड़ा माइग्रेंट के नाल एक किस्म का, या माइग्रेंट किसी भी मुल्क च कोई भी, हुण चाइना दे विच जिहड़ा माइग्रेंट वह जिहड़ा एशियन लुक का नहीं है या चाइनीज़ लुक का नहीं है, वह माइग्रेंट ही है। बट इत्थे आके उही जिहड़ी लुक दे लोग हैगे ने जिहड़े मेन स्ट्रीम मेनलैंड चाइना च अपने आप नूं रिलेटिड महसूस करते हैं, इत्थे आके वह भी कटे हुए महसूस करते हैगे ने। ये जिहड़ा एक ट्रेंड है कि जिहदे करके माइग्रेंट्स निशाने ते आ जांदे ने, उहदे विच उहदे ते भी गल एक अलग तो होनी चाहिए हैगी। फॉर एग्जाम्पल एक रिपोर्ट मैं होर पढ़ रहा सी आरटी दी, उहदे च कह रहे हैं कि यूरोप दे विच, यूरोप च अजकल बड़ा कुछ हो रहा है, यूरोप दे विच जिहड़े देश जल रहे ने फ्रांस स्पेन बेलजियम अलग अलग थावां ते अलग अलग कुछ हो रहा है, उहदी भी गल करनी है। पर पहला जिहड़ा माइग्रेंट दे नाल जुड़े एक इत्थे स्टडीज़ हुई हैगियां ने, एक रिपोर्ट दे विच पता चलिया कि पिछले दो डेकेड्स यानी 20 सालां दे विच यूरोपी मूल दे जिहड़े लोग ने उहनां दी गिणती घट रही है, ते प्रवासी जिहड़े हैगे ने जिहड़े गैर यूरोपियन लगदे ने या दिखदे ने उहनां दी गिणती जिहड़ी उत्थे यूरोप दे विच वध रही है। उह च अफ्रीकन ने, उह च एशियन ने, उह लोकां दी गिणती उत्थे बाद रही हैगी। एक डेमोग्राफी डैशबोर्ड है जिहदी शुरुआत इंस्टीट्यूट फॉर रीमाइग्रेशन उन्होंने की सी, IFR। वो IFR दे विच जिहड़े रिसर्चर्स ने उन्होंने देखिया कि इमीग्रेशन दे इंपैक्ट अलग अलग मेनस्ट्रीम यूरोपियन कंट्रीज़ दे विच कित्थे पै रहे ने। आबादी जदों वधदी है तो उहदे नाल यूरोप दे विच कोई तब्दीली हो रही है, यूरोप के ढांचे दे विच कोई तब्दीली हो रही है। एक ए अंदाजा उहदे च ही इह स्टडी च पता चलिया कि 2015 तो 2024 तक जे पॉपुलेशन नूं देखिया जावे तो यूरोप दे विच प्रवासियां दियां, प्रवासियां दी कैटेगरी दे विच अफ्रीकी मध्य पूर्व दे लोग, एशियन कंट्रीज़ दे लोग ये जड़े ने ज़्यादा बढ़ रहे हैगे ने। और इन्हां अलग अलग कैटेगरीज़ दे विच जिहड़े लोग ने वह यूरोप की सिटीजनशिप लैन तक अगे चले जाते हैं, उत्थों का पासपोर्ट तक हासिल करते हैं। उदाहरण के तौर पर जर्मनी, जर्मनी जिहड़ा हैगा, जर्मनी दे विच उन्हां लोकां नूं ही माइग्रेंट्स नूं, चाहे वह पक्के वसनीक ने, उन्हां नूं ही जर्मनी जिहड़ा नागरिकता दिंदा, सिटीजनशिप दिंदा, जिहड़े उत्थे पैदा होए हुण, जिहड़े पैदा ही नहीं होए या जिन्हां दे माता पिता दे विच कोई एक उत्थे पैदा नहीं होया उन्हां नूं सिटीजनशिप नहीं मिलती है, कि उन्हां नूं मूल वासी नहीं कहा जाता। यूरोप दे विच पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स जिहड़े ने उह कंटिन्यू बदल रहे ने। यूरोप दे विच स्विट्जरलैंड जिहड़ा कि बड़ा खूबसूरत देश मनिया जाता है, इस रिपोर्ट दे विच दावा एक क्लेम किया गया कि स्विट्जरलैंड दे विच जिहड़े मेन स्ट्रीम स्विट्जरलैंड दे लोग हैगे ने, मेनलैंड दे लोग ने, 2038 तक जांदे जांदे उन्हां दी आबादी 50% तक रह जाएगी, 50% बाकी दे जिहड़ी आबादी होएगी वह सारे दे सारे माइग्रेंट्स होणगे। 2044 दे विच बेलजियम दे लोग अपनी ही कंट्री दे विच घट गिनती हो जाएंगे। तो इस तरीके दे नाल ब्रिटेन च 2053 तक जो हाले 27% दे आस पास प्रवासियों की आबादी है वो उल्टा हो जाएगा, यानी उतों के लोकल लोगों की
ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 30%

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी हांजी।
1: जब चाहे तो

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी, सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर। हां जी हां जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674। सुनते रहो सुनते रहो। हां जी

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
2: एक पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान जाएगा।
3: देशभक्ति तो याद आ गई।
4: देश कौन सा है? ये भूल गया।
1: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
5: ये बॉर्डर चल रही है?
1: नहीं जी, ये तो Urda Teer चल रहा है। From October 9th at cinemas near you.
6: This station is now the ultimate power in the universe.
7: Radio Haji 1674.
8: मेरे शहर दी सब तो चंगी खुशबू तेरे कोलों संग गई।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
3: हांजी रेडियो।
4: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
5: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
6: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
5: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
6: आहो जी आहो
7: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर
1: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टंच विच वी तुहाडी सेवा विच

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: यू आर लिसनिंग
3: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: रेडियो हांजी, स्टे ट्यून्ड।

दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: अक्षरा जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
2: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
3: Deshbhakti to yaad aa gayi.
4: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
1: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
5: Woh ye border chal rahi hai?
1: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
6: Din par de kamma karan ch kar paise bhejna shamil karna chahunde ho. Zindagi tuhanu chahe jithe vi le jave. वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिना च भी तुहाडे अपनियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
0: लादे फिर
2: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
3: हांजी रेडियो।
4: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
5: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
6: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
5: ਬੈਸਟੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-466 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ ਹਾਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ, ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: You are listening
3: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
3: Radio Haji
2: Stay tuned।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: फुलकारी उत्ते बेल बूटियां, मित्रां दे चादरे ते पादे मोरनी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल, तुसी सुन रहे हो हां जी रेडियो।
2: हां जी।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

ऑस्ट्रेलिया। हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: सिडनी वाले तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM। रेडियो
1: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी 1674 AM रेडियो
1: Attention, commission on and better than our

0: अज दा विचार अज दी कहानी हर रोज तुसी सुनदे हो शो हांजी मेलबर्न विच तुहाडी डिमांड उत्ते आओ एक बार फिर सुनदे हां इस हफ्ते दी एक बेहतरीन कहानी
1: रेडियो हांजी 1674 आस करदे हां दिन तुहाडा वधिया जा रहा होवेगा मन दे विच होवेगा शुकराना उस रब दा जिन्हें अज दा दिन दित्ता चेहरे दे उत्ते एक प्यारी जी मुस्कुराहट समा हो चुका अज दी कहानी दा कहिंदे ने एक वारी एक बजुर्ग मां जिहड़ी वेखदी आ कि उहदा बेटा बहुत कम करदा बहुत मेहनत करदा दिन रात बिजी रहिंदा अपनी सेहत वल भी वेखदी आ हुण शायद बहुता समां नहीं बचा उहदा साथी उहदा घर वाला पहले ही जा चुका एक दिन पुत नूं आवाज मारदी कोल बैठन दे लई घड़ी कहिंदी ते कुछ गल्लां बातां सांझियां करती वेख मेरा पुत तू दिन रात मेहनत करदा रहना थोड़ा अपने आप का ख्याल रख्या कर अपनी सेहत का ध्यान रख्या कर ते पुत ने हस के अगों जवाब दिता मां मेरा बॉस कहिंदा है कि अज तू पैसे का साथ देगा ते कल नूं पैसा तेरा साथ दऊगा है कि ना कल नूं कुछ जमा पूंजी पई होगी ते काम आजूगी नहीं तो कौन पुछता इस दुनिया के हसते हसते ने जवाब दिता मां ने भी यह जवाब सिर मथे किया सिर ते हथ रख्या प्यार दिता ते कहा मेरा पोता एक काम सी तेरे ना एक ते आ मेरी चिट्ठी ये मेरे जान तो बाद पढ़ी पता नहीं क्यों लगता कि हुण दिन थोड़े बचे ने समय सिर ये चीज़ां तैनू सौंपती जावां ते एका मेरी जुत्ती इन्हें लम्मा समा मेरा साथ दिता जिदन मैं इस दुनिया तो चली गई ना ये जुत्ती मेरे नाल ही मेरे कॉफिन दे विच पा दी मां किदां दीआं गल्लां करदी किते नहीं जांदी तू कुट के गल दे नाल लाया ते अपने काम ते निकल गया कुछ समय बाद मां पूरी हो गई दुनिया तो चली गई आखिरी क्रियाक्रम करदिआं अचानक ध्यान जुत्ती वल पिआ मां ने अपनी आखिरी इच्छा दसी सी जदों मां नूं दफनाउणा सी ते जुत्ती घरों नाल लै गया मां दी आखिरी इच्छा ये जुत्ती भी नाल पाउणी आ ते नाल चिट्ठी दा भी ख्याल आया मां दे कहण मुताबिक मेरे जाण तों बाद पढ़नी आ जदों सारे आखिरी रस्मां रवाजां कर रहे सी उस टाइम दे उत्ते पुत ने जुत्ती कद के गांह वधाई ते पादरी नूं कहा पादरी जी मेरी मां दी आखिरी इच्छा सी ये जुत्ती भी मेरी मां दे नाल रख दिओ पादरी ने एकदम जुत्ती वल वेख्या फिर उस मुंडे वल ते पुछया की तेनू पता नहीं इदां दी हंडी टुट्टी जुत्ती नहीं रखी जा सकती नाल पर फिर भी मैं अपने वडेरियां नूं पुछ दिना जिहड़े उत्थे कोई सीनियर खड़े ही उहनां दे नाल गल कीती पर उन्होंने मना कर दिता ये जुत्ती कॉफिन दे विच नहीं रखी जा सकती ये ठीक नहीं मनिया जाता जदों कोई दुनिया तो जा रहा तो उहदे नाल कोई इदां दी वस्त नहीं रखी जा सकती जिहड़ी थां थां तो टुटी हंडी वरती पुरानी पोता मन उदास होया पर हुण कर की सकदा है अचानक मन दे विच आया वेखां तां सही चिट्ठी उत्ते की लिखिया मां ने ते मां ने जुत्ती बारे जिक्र किया चिट्ठी च मां ने कहा सी वेख मेरा पुत मेरे आखिरी दिनों दे विच सब तो वधेरे साथ इस जुत्ती ने मेरा दिता मैं जानती हाँ हुण तक मैं जली जा चुकी होवांगी ते मेरी आखिरी दिनों की साथ ने जुत्ती नूं भी तेनू इन्हां ने नाल नहीं रखन देना पर तू उदास ना होए मैं सिर्फ तेनू एहो दसना चाहुंदी सी कि मेरे आखिरी समय की साथन इस जुत्ती नूं भी मेरे नाल नहीं इन्हां ने जान देना ते ना ही कुछ जा सकता। तू सियाणा, मैं तो सिर्फ इहो ही तैनूं दसना चाहुंदी सी कि मेरे नाल सब तो वध समां बिताउण वाली ये जुत्ती जे भी नहीं मेरे नाल रखण दित्ती गई ते फिर इन्ना समां ला के कमाए गए पैसे ये भी कितों नाल जाने ने। नाल रखिया कोई चीज़ नाल नहीं चली जाती। जिंदे जी उही आ जो तुसी हंडा लिया, जो तुसी गवा लिया, जो तुसी जी लिया। उस तो बाद की होया की नहीं होया ये किनू पता। मैं तो तेनू इन्ना कहना चाहनी अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रख्या कर। तंदुरुस्त चीज़ों की वैल्यू पैंदी है। थां थां तो टुटियां चीज़ां नाल नहीं जांदियां, किसी का बहुता चिर साथ नहीं देंदियां, ना जिउंदे ते ना मोए। जे तू तंदुरुस्त है तो सारा कुछ ठीक है। काम भी करो, चम चम करो, कमाइया करो, जरूर काम आउंदियां ने, पर सब तो वधेरे तुहाडे काम आउंदी है तुहाडी तंदुरुस्ती। ये गल मैनू मेरे वडेरिया ने दसी ही ते अज मैं तेनू दस के चल चली हाँ। अपना ते अपने शरीर दा ध्यान रख्या कर। तेरी मां ते बेटा उत्थे खड़ा सोच रहा, ते मां मैनू की कह गई है कि मैं अपनी तंदुरुस्ती दा ध्यान रख पाऊंगा जां मैं रख रहा। इस टाइम मेरे लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जां मेरी तंदुरुस्ती जां मेरा परिवार। आस करते हैं कि अज की कहानी तुसी पसंद की होगी। अपना ख्याल रख रहे होगे, तंदुरुस्त होवोगे, तो यहोजे किसी झंबेले दे विच नहीं होवोगे जिहदे विच तुहानू अपनी तंदुरुस्ती सैक्रीफाइस करनी पै रही, अपनी तंदुरुस्ती का बलिदान देना पै रहा। क्योंकि कहिंदे ने जे तुहाडा शरीर ठीक है, तुहाडा शरीर तुहाडे नाल चलता तो फिर सारा कुछ आपे ठीक हो जाता। जे तुसी तंदुरुस्त हो तो पैसा अपने आप ही आई जाता। जे तुसी तंदुरुस्त नहीं हो तो किन्नी भी मेहनत कर लो तुहानू आया पैसा भी चंगा नहीं लगता, तो कई बार आया पैसा भी तुहाडी सेहत याबी दे उत्ते लग जाता। सो सब तो इंपोर्टेंट साडे लई साडी तंदुरुस्ती, साडे शरीर का ठीक होना। आस करदे आं अज की कहानी तुसी पसंद की होगी।
0: ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ, ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ।

ग्रोवर्स, वी ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: This autumn, laugh out loud with Ayushmann Khurana and Sada Ali Khan in Urda Teer.
1: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
2: Desh bhakti to yaad aage.
3: Desh kaun sa hai? Ye bhool gaya.
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Oh, ye border chal rahi hai.
0: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
5: Mera naam hai Ratan Noora aur kaam karta hoon khatam pura be love you all. भावनाओं को समझो
6: दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी, अभी ना कहना हांजी ना जी।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब हम बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में एक नई नजर से देखने लगते हैं तो उसे हम इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, और इन दिनों हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ इस श्रृंखला में हमें समझ में आ रहा है, नए बिलीफ सिस्टम्स बन रहे हैं, उन्हें हम शामिल करते जाएं अपनी डे टू डे थिंकिंग में। और ऐसे में स्ट्रेस से जुड़े कई ऐसे बिलीफ सिस्टम थे, हमारे ऐसे स्ट्रांग थॉट्स थे जिन पर हमारा जीवन आधारित था, कि स्ट्रेस बहुत जरूरी है, या स्ट्रेस जो है मेरी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, या मेरे सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए मुझे देना ही पड़ेगा उनको बदले, क्योंकि वो देख लिया हमने कि वो नहीं काम कर रहे थे। इनफैक्ट उसी के कारण जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अगर हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं तो जो जिंदगी में मुश्किलें आ रही थी, जो डिप्लीशन हो रहा था, वो बच सकता है। आगे और जानते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे पास, वो उन्हें हम नॉर्मल बांधकर अपने जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: तो सिस्टर शिवानी, अभी तक जो हमने बातें की, स्ट्रेस की कई ऐसी सारी मिथ सामने आई है कि जिस बिलीफ सिस्टम पर हम, मतलब उस पे हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ था, और अगर अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जो हमने पिछली बार बात की थी जो शुरू में ही, कि बिलीफ सिस्टम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मेरी पूरी डेस्टिनी के लिए, यू नो, मैं मतलब उसी पर काम करती जा रही होती हूँ।
1: इसीलिए तो बिलीफ सिस्टम्स को चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मेरी पूरी लाइफ के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो आई जस्ट कांट अफोर्ड टू हैव रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स। एंड रॉन्ग और राइट भी हम कहते हैं ना, कौन बताएगा रॉन्ग और राइट? एनी बिलीफ सिस्टम जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है वो मेरे लिए रॉन्ग है। वी आर नॉट गोइंग टू जनरलाइज इट एंड से कि ये सबके लिए रॉन्ग है। ये बिलीफ सिस्टम मेरे लिए रॉन्ग है। टेंशन नेचुरल है, ये बिलीफ पकड़ा तो टेंशन जब क्रिएट हुई अंदर उसको स्वीकार करते गए, टेंशन क्रिएट होती गई,
0: पर काम करने
1: काम नहीं किया तो फिर वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। फिर वो मेरे आसपास जो है बच्चे परिवार उनके भी जीवन का हिस्सा बनता गया। तो हाउ कैन आई कॉल दैट दिस इज अ गुड और दिस इज अ राइट बिलीफ सिस्टम? आई नीड टू एक्सपेरिमेंट कि टेंशन अननेचुरल है, पीस रिलैक्सेशन स्टेबिलिटी ये नेचुरल है। वैसे भी वो मुझे कंफर्टेबल फील कराता, चिंता तो मुझे हमेशा अप एंड डाउन लेके जाता।
0: अच्छा, इसमें भी अगर हम देखें तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी चिंता, थोड़ी टेंशन, क्योंकि ज्यादा होते वो हमारे को पता चल जाता है कि वो हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा वरी।
1: सी, अब क्या होगा, थोड़ी थोड़ी, जैसे अपने शरीर को लेते तो हमने कहा हेल्थ नेचुरल है। हमने कभी आपने कहा अपने आप को कि थोड़ा बीमार होना नेचुरल है? नहीं। तो हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ नेचुरल है, ये लक्ष्य लेकर आप हम अपने शरीर का ध्यान रखते तो वो हमेशा ठीक ही रहता, कभी कभी फिर थोड़ा सा हो जाता। लेकिन जब थोड़ा सा भी बीमार पड़ता तो हम तुरंत अपने आप को कहते हेल्थ नेचुरल है, ये कहाँ तकलीफ हो रही है, इसका जल्दी से चेकअप कराओ और इसको ठीक करो। लेकिन अगर हम अपने उस बिलीफ को चेंज करें और कहें थोड़ा थोड़ा बीमार होना तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बीमार होना नेचुरल है।
0: लेकिन ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज के वक्त में हम ये कहने लग गए हैं कि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, क्योंकि हम इतने टेंशन में होते हैं, इतने स्ट्रेस में होते हैं, तो थोड़ा सा सर में दर्द, थोड़ा सा पेट में दर्द, थोड़ा सा कुछ खराब होना नेचुरल, ब्लड प्रेशर भी है।
1: एंड देन व्हाट इज योर डेस्टिनी विद दैट, कि वो थोड़ा थोड़ा आपके साथ ही चलता है। तो जो सर दर्द नेचुरल नहीं है उसको स्वीकार कर लिया एज नेचुरल, नहीं बड़ी बड़ी चीजें तो खैर जो हो अगर हो, लेकिन सर दर्द के साथ भी क्यों जीवन में चले, बैक एक के साथ भी क्यों चले, जस्ट बिकॉज वी सेड इट्स नेचुरल। नाउ व्हाई डू वी से इट्स नेचुरल, क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया उसका कोई इलाज नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते सर दर्द के लिए, सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है। Now why we said it's natural? क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, और वहां हम मेहनत नहीं करते या वहां हमें पता ही नहीं था कि कैसे मेहनत करनी है, जस्ट बिकॉज वी सेड इट्स नेचुरल। नाउ व्हाई डू वी से इट्स नेचुरल, क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया उसका कोई इलाज नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते सर दर्द के लिए, सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है। Now why we said it's natural? क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, और वहां हम मेहनत नहीं करते या वहां हमें पता नहीं कि कैसे मेहनत करनी है। तो जैसे हमने टेंशन को स्वीकार किया, तो टेंशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो है हेडेक. टेंशन का बाय प्रोडक्ट है ये बैकएक, ये अल्सर्स. तो फिर क्योंकि उनका कोई यू नो फिजिकल लेवल पर इलाज नहीं था, उनका इलाज ही था कि अपने थॉट्स को चेंज करना. वो हमने कहा वो तो कैसे होंगी क्योंकि पेनफुल थॉट्स तो नेचुरल है. तो अगर दर्द वाली थॉट्स, गुस्से वाली थॉट्स नेचुरल है तो उनका जो आफ्टर इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट है, वो भी तो नेचुरल ही लेना पड़ेगा ना मुझे. तब मैंने हेडेक को, ये बैकएक को, इनको भी नेचुरल ही ले लिया. एंड नेचुरल नेचुरल बोलते बोलते आई एम कैरिंग ऑल दिस पेन इन माई लाइफ, इमोशनल पेन ऑल्सो, फिजिकल पेन ऑल्सो. फिर ये जो पेन था ये मेरे रिलेशनशिप्स में दिखाई देने लगा. आएगा ही, मैं फिजिकली दर्द में हूँ, इमोशनली दर्द में हूँ, व्हाट डू आई गिव इन टू माई रिलेशनशिप्स. फिर मेरे रिलेशनशिप्स में थोड़ा थोड़ा टक्कर, थोड़ा थोड़ा स्वभाव संस्कार ये होने लगा. एक दूसरे से हम थोड़ा सा खिंचे रहने लगे. फिर उसको भी हमने क्या कहना शुरू किया,
0: नेचुरल है. यस, रिश्तों में खिंचाव तो मतलब इतनी इतनी तो बात चलो ठीक है ना, इतना तो होता ही है.
1: रिश्तों में खिंचाव नेचुरल है. एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, ये सब होना, ये तो नेचुरल है. अब हमारी
0: हो जाता है, नेचुरल है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो.
1: तो नेचुरल नेचुरल करते करते फिर कितनी सारी अननेचुरल चीजों को
0: हमने नेचुरल की पदवी दे दी है.
1: क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट चीज थी उसको ही हमने कहा ये थोड़ा थोड़ा नेचुरल है.
0: एक्चुअली हमारे पास इलाज ही नहीं थे सच्ची, वेरी ट्रू. यू नो हमने अगर थोड़ा सा भी कोशिश भी की हमें समझ में ही नहीं आया क्या करें, तो हम फिर आगे तो बढ़ना ही है तो आगे बढ़ते.
1: और टेंशन थोड़ा थोड़ा नेचुरल है ये कहने पर थोड़े की डेफिनेशन या थोड़े का पैरामीटर कौन फिक्स करेगा कि थोड़ा क्या? क्योंकि हमारी टेंशन सिचुएशन पर डिपेंडेंट है. आज हमने कहा सिचुएशंस स्ट्रेस क्रिएट करती, तो आज छोटी मोटी सिचुएशंस है, हमने कहा थोड़ा बहुत स्ट्रेस ये तो नेचुरल है. लेकिन क्या कल सिचुएशन मुझे बताकर आएगी? टुमारो कुड बी अ बिगर सिचुएशन. कल हो सकता फाइनेंशियल क्राइसिस हिट्स में, कल हो सकता मेरे घर पे कुछ हो जाए, बिजनेस अप एंड डाउन हो जाए, नेचुरल कलामिटी हिट. आई मीन इट्स अनप्रेडिक्टेबल जिन समय में हम चल रहे हैं. तब क्या करेंगे? तब क्या हम अपने टेंशन पर काम कर पाएंगे कि वो थोड़े वाले पर ही रखना है, टेंशन को बढ़ाना नहीं है? विल आई बी एबल टू, लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आज मेरा टेंशन नंबर 2 पर है, लेकिन कल परिस्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई, विल आई बी एबल टू कीप इट एट नंबर 2? इट विल इमिडिएटली गो अप. एंड तब हम कहें क्या करे, परिस्थिति ऐसी थी,
0: ये तो होना ही था,
1: होना ही था.
0: अच्छा एक और बात, बहुत से लोग कहते हैं, इस पर भी मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना, ये छोटी छोटी बातों पे तो बहुत परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें जो इन्हें इरिटेट करती है, लेकिन कोई बड़ी बात आ जाती है ना अगर, तब स्टेबल रहते हैं. सो व्हाट इज दैट पर्सनैलिटी?
1: इट इज अ पर्सनैलिटी जो सिचुएशंस को, जब सिचुएशन बड़ी आ जाती है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर लेते हैं. एक होता है छोटे छोटे लेवल्स पर इरिटेट होना, यू नो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. एक होता है बड़ी जब सिचुएशन आती है तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलाइजेशन है कि इस सिचुएशन को तो मैंने फेस करना है. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस बहुत कंप्लीट है कि मुझे सिचुएशन को क्रॉस करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है.
0: अच्छा, जो बाकी छोटी छोटी चीजें जो थी उनमें,
1: हाँ, उनमें तो वो सिचुएशन नहीं थी ना, उनमें उन्होंने इरिटेशन को अपना नेचुरल बिहेवियर कर लिया. अब बड़ा कुछ ट्रेजेडी हिट कर गई फैमिली में, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे परिवार को, पूरी कंपनी को, सबको इसके साथ मैंने लेकर जाना है. ऐसे समय पर वो अपनी स्ट्रेस को अपने साथ अंदर रख लेते हैं, सिचुएशन को क्रॉस करते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि विद स्टेबिलिटी. अगर वो छोटी चीज में स्टेबल नहीं थे तो बड़ी में स्टेबल होंगे, वो नहीं है. लेकिन सिचुएशन को क्रॉस करना है, उस समय वो उसको अंदर रख लेते हैं. नॉट यू नो, जैसे अगर घर में सारे टेंशन में है तो आई इमिजिएटली से एटलीस्ट मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना है जिससे ये और भी टेंशन में आ जाए, तो मैं तुरंत अपना बिहेवियर, अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से करता हूँ, बट नॉट नेसेसरी थॉट्स को. वो फिर उनको खुद को ही पता है,
0: अंदर अंदर
1: वो उनको खुद पता है. और कई लोगों के साथ ऐसा भी होता कि सिचुएशन को तो वो क्रॉस कर लेते. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर परिवार में देर इज अ डेथ इन द फैमिली, सब लोग बहुत अपसेट हैं, बहुत रो रहे हैं, तो एक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, नहीं हमने इसको क्रॉस करना है, तो वो एकदम अपने वो दर्द को अंदर ही दबा देते हैं, पूरा वो जो है सिचुएशन उसको क्रॉस करते. लेकिन कई बार उसके बाद वो
0: ब्रेकडाउन
1: हो जाते हैं. एंड यू नो एवरीथिंग. तो इसको हम कहेंगे नॉट के स्ट्रेस क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसको अंदर
0: ब्रेकडाउन जो है वो तो और खराब हो जाता है,
1: तब वो फिर ब्रेकडाउन हो जाता है. तो हम जिस लेवल की बात करें कि वो अंदर क्रिएट ही ना हो, हम छोटी छोटी बातों में पहले ट्राई करें कि हमें स्टेबिलिटी से क्रॉस करना, फिर बड़े वाले में एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बड़े वाले को नेचुरली क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन स्टार्ट छोटे छोटे वाले सिचुएशन से करना पड़ेगा. कई बार हम समझते कि स्ट्रेस जो है वो एक एलिमेंट, एक बीमारी की तरह है, कि क्या एक डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकते हैं,
0: तो हो ही नहीं पाएगा.
1: सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है. तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ. पेशेंट भी मैं तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ. जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकंफर्टेबल लगता, सो वी गो एंड चेक आर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ पैरामीटर अफेक्टेड है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है. तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ. पेशेंट भी मैं तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ. जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकंफर्टेबल लगता, सो वी गो एंड चेक आर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ. सिमिलरली रोज सुबह उठकर अपने थॉट्स की पल्स को चेक करो, कैसी वाली है, बीट कैसी है, नेचुरल है, ऐसे तो नहीं कि बहुत फास्ट फास्ट चल रही है. अब हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हम तुरंत कहते हैं कुछ प्रॉब्लम है. हम ये नहीं रियलाइज करते ये हार्ट बीट फास्ट हुई क्यों, इससे पहले यहाँ कुछ बहुत फास्ट चल रहा है और डेफिनेटली बहुत नेगेटिव क्वालिटी का चल रहा है जिसकी वजह से ये हार्ट बीट फास्ट हुई, ये पल्स रेट फास्ट हुई. तो जब वो स्ट्रेस हमारे फिजिकल के ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाता, तब हमें लगता कि अब इसका इलाज करवाना जरूरी है. अगर उसको उसी लेवल पर ठीक कर दिया होता तो फिर वो फिजिकल लेवल पर आता ही नहीं. जो हमने पिछली बार बात की कि स्ट्रेस फॉर परफॉर्मेंस, स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को तो अफेक्ट करता ही करता, लेकिन सबसे पहले वो मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर पर इफेक्ट कर जाता, मेरी मेमोरी पावर पर इफेक्ट करता, मेरी निर्णय शक्ति. तभी भी अगर आप स्ट्रेस के अंडर है, डोंट टेक अ डिसीजन, क्योंकि वो डिसीशन हो सकता है कि राइट ना हो, क्योंकि तनाव के अंदर यहाँ बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता और स्ट्रेस हमारी फिजिकल इस कॉस्ट्यूम पर, इस शरीर पर बहुत ज्यादा असर करता है. अगर किसी के अंदर चिंता करने की आदत है, वरी वरी वाले थॉट्स, तो फिर इनडाइजेशन, अल्सर, ये उनके लिए बहुत कॉमन होता. एंगर है तो कैंसर, यू नो रिजेंटमेंट पकड़ कर रखा है किसी के प्रति, तो वो क्रिएट हो जाता. बहुत दर्द वाले थॉट्स हैं, हार्ट पे इफेक्ट होता, ब्लॉकेज हो जाती क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ब्लॉकेज करके रखा है. सो वो हमें चेक करना है कि माइंड के लेवल पर अपने आप को ब्लॉकेज को क्लीन करते जाए, ताकि फिजिकल लेवल पर वो क्रिएट ही नहीं होना
0: चाहिए. You know, it'll actually take you out of that stress. और उसके बाद आपके आप fresh होकर एक बार फिर से जिंदगी को, मतलब जिस भी situation में थे, वो शुरू कर सकते हैं. Does it really help?
1: Temporary, yes. क्योंकि अगर आप एक particular environment में काम कर रहे हैं, जैसे work पे हैं, आपके एग्जाम्स हैं, तो आप बहुत ज्यादा उस स्ट्रेस से गुजरे, तो आपको लगता है एग्जाम के बाद लेट्स टेक अ हॉलीडे, या बहुत ज्यादा तनाव है, चलो ऑफिस से तो थोड़े दिन छुट्टी लेकर कहीं चले जाते. लेकिन दैट्स नॉट द सोल्यूशन. इट इज अ टेम्पररी, इट्स अ रिलैक्सेशन जिसमें आप अपनी नॉर्मल रूटीन से कुछ डिफरेंट कर रहे हैं. वो वैसे भी अच्छा लगता है कि कुछ भी आप जो रोज करते आए हैं उससे आप डिफरेंट कर लेते हैं. जैसे ही आप कुछ डिफरेंट करने जाते तो आपकी थॉट्स थोड़ी सी उस तरफ से हटकर दूसरी तरफ चली जाती. लेकिन कई बार तो लोग अपने तनाव को अपने साथ हॉलीडे पर भी कैरी कर लेते हैं. अच्छा, वो नहीं भी किया लेकिन जब वापस आएंगे तो फिर भी तो वही सिचुएशन है. तो ठीक है, मैंने उसको स्ट्रेस को फिनिश नहीं किया, मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि मैं 15 दिन के लिए कहीं और जाकर आता हूँ, मे बी आई गेट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. यस, तो रेस्ट हमारी बॉडी को तो रेस्ट देता, लेकिन माइंड को रेस्ट देने के लिए मुझे 15 दिन का हॉलीडे नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ सारा दिन बीच बीच में एक मिनट इसको रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम ऐसे आप काम करो फिर 15 दिन, क्योंकि 15 दिन आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, माइंड तो फिर भी काम कर रहा है। इम्पोर्टेंट ये है वो क्या काम कर रहा है, किस तरह की क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट कर रहा है। हॉलीडे पे जाना या रेस्टोरेंट जाना, पार्टी करना, दिस इज ऑल ओके, ये एंटरटेनमेंट है, दिस इज अ चेंज, बट इट इज नॉट फिनिशिंग ऑफ स्ट्रेस, इट इज नॉट सोल्यूशन फॉर स्ट्रेस। सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस हमारी वे ऑफ थिंकिंग में है। और जब आप अपने वर्क को, अपनी पढ़ाई को, अपनी नॉर्मल रूटीन को एंजॉय करना शुरू कर देते, तो हॉलीडे का कॉन्सेप्ट, आई मीन आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई वेंट लास्ट फॉर अ हॉलीडे, आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज हॉलीडे की फीलिंग
0: बिकम्स
1: हॉलीडे की फीलिंग कब आती है, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक कब होगा, जब मैं यहां अभी I am not, you know, happy. I need to take a break from this. I don't know when it happened last. क्योंकि अगर आप हर रोज को enjoy कर रहे हैं, हर रोज हल्के हैं, तो break लेकर क्या करेंगे? यही सब कितना, you know, you enjoy your work. आप जो कर रहे हो, उसी के अंदर अगर आप right thought से उसको कर रहे हो, you're enjoying each day. You don't need to take a break for that than anything.
0: वेरी ट्रू। समवेयर वही स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमने सोचा कि हॉलीडे या ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो ब्रेक से आने के बाद भी स्ट्रेस भी वही रहा, वो फैक्टर्स वही रहे।
1: तो और स्ट्रेस को लेकर जो एक और बहुत बड़ा बिलीफ है वो है कि मेरे स्ट्रेस का कारण बाहर है, मेरे तनाव क्यों, हमने जो दूसरा बिलीफ पकड़ा कि तनाव नेचुरल है, टेंशन नेचुरल है, क्योंकि टेंशन के कारण बाहर थे, टेंशन के कारण थे एग्जाम्स, टेंशन का कारण है सिलेबस, टेंशन का कारण है मेरा बॉस, टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते,
0: मदर इन लॉ, यू नो, सच अ मेजर फैक्टर।
1: तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला है सिलेबस, टेंशन का कारण है मेरा बॉस, टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते,
0: मदर इन लॉ, यू नो, सच अ मेजर फैक्टर।
1: तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला। फिर मैंने कहा मेरी टेंशन का कारण आप चेंज होते नहीं हो, तो फिर मुझे टेंशन में तो रहना ही पड़ेगा। दैट इज हाउ आई एक्सेप्टेड माय टेंशन एज नेचुरल,
0: यू नो, कि सिचुएशन तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब तो ऐसे जीना पड़ेगा, यू नो, अमेजिंग, यस, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली।
1: तब हमने कहा कि तब इसलिए अगर आप किसी से भी पूछो टेंशन होती है आपको, तो कहे समय ऐसा चल रहा है, समाज ही ऐसा है, क्यों, क्योंकि मेरी टेंशन का कारण कौन है, वो समाज, एंड समाज मीन्स एवरीवन अराउंड।
0: वो यही बात है जवाब कि आपको नहीं होती, कोई ऐसी चीज है, यू नो, कोई ऐसी जगह है जहां से टेंशन ना हो, सो मेनी टाइम्स पीपल से
1: टेंशन से भागने वाली कोई जगह है। इफ यू वांट टू लिबरेट योरसेल्फ इस बीमारी से, सिर्फ इस एक बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लो, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन। नो वन एंड नथिंग, नो वन, एंड जब हम कहते हैं नो वन मीन्स नो वन एंड नो सिचुएशन इज द कॉज ऑफ माई स्ट्रेस। दीज आर सिचुएशंस, दीज आर पीपल जो बाहर से आते, स्ट्रेस इज माई रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। हाँ परिस्थिति चैलेंजिंग है, लेकिन आपको नहीं पता क्या हुआ। हाँ परिस्थिति बहुत चैलेंजिंग है, हमने कुछ दिन पहले ही देखा डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन माई फैमिली। अब इससे ज्यादा बड़ी परिस्थिति कोई नहीं हो सकती शायद किसी के लिए, लेकिन फिर भी वो बाहर है, वो परिस्थिति यहाँ है, उस परिस्थिति के रिस्पॉन्स में मुझे जो थॉट्स क्रिएट करने वो यहाँ है, ये मेरे हाथ में है। एक ही चीज है जो मेरे हाथ में है और कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो थॉट्स आई क्रिएट। लेकिन उसी को मैंने सोचा कि यही मेरे हाथ में नहीं है, तो देन आई वेंट ऑल आउट ऑफ कंट्रोल।
0: अमेजिंग, यस, यू नो,
1: सो द नेक्स्ट टाइम यू से मदर इन लॉ, द नेक्स्ट टाइम यू से चिल्ड्रन, एग्जाम, सिलेबस, जिससे ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इनको रिस्पॉन्ड कैसे करना ये मेरे हाथ में है, वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्ट्रेस यहाँ क्रिएट होता, यहाँ कोई घुस नहीं सकता। स्ट्रेस है मेरी फियरफुल थॉट्स, स्ट्रेस है मेरी चिंता वाले थॉट्स, परिस्थिति उसी परिस्थिति में, और इसीलिए हम देखते एक ही बॉस है लेकिन अलग अलग लोग उनके अंडर काम करते हुए डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक का इनर स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो अब हमें समझ में आता कि स्ट्रेस प्रेशर पे नहीं डिपेंडेंट, स्ट्रेस इनर स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट है, और जो जितना अपने इनर स्ट्रेंथ अपने रिस्पॉन्स पर ध्यान देगा उसको स्ट्रेस नहीं होगा, और जो जितना ब्लेम करता जाएगा औरों को वो विक्टिम की तरह अपनी जीवन जीता जाएगा। मैं क्या करूं, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा है या मेरे साथ ऐसा हो गया या उन्होंने मेरा इतना, इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते जाएंगे वी क्रिएटिंग अ डेस्टिनी ऑफ टेंशन ऑफ स्ट्रेस एंड देयरफॉर ऑफ पेन। सो वन बिलीफ सिस्टम शिफ्ट कि स्ट्रेस मेरी क्रिएशन है, ये किसी परिस्थिति या व्यक्ति से नहीं आती है, I create it and I can actually create it even if nothing is happening outside. सब कुछ ठीक भी होगा ना, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे सब ठीक चल रहा है बाहर, nothing is wrong, तो भी उनको टेंशन है
0: कुछ कुछ बाहर का सोच के या कुछ कुछ और।
1: कई लोग कहते हैं कि इस बात की चिंता है कि कोई चिंता क्यों नहीं है आज,
0: ये क्या हो गया है,
1: सब कुछ ठीक ठाक कैसे चल रहा है,
0: गड़बड़ होगा ही होगा।
1: सो देयर यू हैव गॉन एंड क्रिएटेड अ नेगेटिव थॉट इन रिस्पॉन्स टू सब कुछ ठीक है तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला इसके बाद, एंड आपने गलत क्रिएट कर दिया ऑलरेडी उसी टाइम। जैसे ही हम उंगली ऐसे करते हैं, यू नो दे आर क्रिएटिंग, नहीं वो तो ठीक है, वो मुझे मालूम है, दैट्स वेरी कॉमन कि चार उंगली मेरी तरफ है, लेकिन जैसे ही हम उंगली बाहर करते माय एनर्जी फ्लोज आउट, आई डिसएम्पावर माई सेल्फ, समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, टोटली एनर्जी हैज फ्लोन अप। जैसे ही आई डू दिस माई एनर्जी का सर्किट इज कम्प्लीट, इट्स हियर, आई हैव द पावर, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, दैट्स ऑल। वो ऐसे हैं, वो कैसे भी है, परिस्थिति इतनी खराब है कैसी भी है, फिर भी थॉट कौन सी क्रिएट करना, अब मुझे सिर्फ ये सीखना है कि किन किन परिस्थितियों में मुझे कैसी वाली थॉट क्रिएट करनी।
0: मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है या मेरी ट्रेन छूटने वाली है।
1: अच्छा, तो आपकी ट्रेन छूटने वाली है, राइट, अब आप ट्रैफिक में अटके हैं, ना आपकी गाड़ी आगे जा रही ना पीछे हिल रही, आप घड़ी देखते जाएंगे, क्या कर उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, ये स्ट्रेस क्रिएट करके या इस तरह से सोच के ट्रेन को रोक सकते हैं।
0: लेकिन वो कैसे मैं,
1: वॉट कैन यू डू, यू ओनली हैव टू सिट देयर,
0: कांट डू एनीथिंग, बट देन इट्स सो नेचुरल,
1: नथिंग, यू इवन देन यू विल ओनली हैव टू टेल योर सेल्फ, होप आई रीच देयर ऑन टाइम, इफ नॉट देन आई विल हैव टू सी नाउ व्हाट नेक्स्ट एंड कीप साइलेंट, दैट्स ऑल। इसके ऊपर तो एक भी सेकेंड थॉट चलाने का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि जितने थॉट्स आप चलाएंगे, जो आपकी गाड़ी चला रहा होगा या जो आपकी ऑटो चला रहा होगा, आप उसको कहेंगे जल्दी करो ये हो रहा है वो, आप पूरा एक ऐसा एनर्जी लेवल क्रिएट कर देंगे कि पता नहीं शायद कोई और नुकसान ना हो जाए फिर सड़क के ऊपर, यू नो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इस तरह से बोलने से इट्स, जिसने वो चला रहा है उसको भी पता है कि उसको टाइम पर पहुंचना है, वो अपने बेस्ट चला रहा है, हमें उसको रिलैक्स रहने देना, ताकि रिलैक्स्ड होगा तो वो बेस्ट चलाएगा।
0: क्योंकि हमारा एक और बिलीफ सिस्टम है कि जब तक मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूंगी वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा।
1: ट्रेन छूटने वाली है शायद, थॉट क्रिएट करो ट्रेन लेट हो जाए। हैव यू एवर ट्राइड दैट? आई हैव ट्राइड दैट मेनी टाइम्स। एंड डू यू नो समथिंग, इट हैपेंस, द ट्रेन गेट्स लेट, द फ्लाइट गेट्स लेट, जस्ट स्टे स्टेबल एंड से आई हैव टू रीच, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है, फ्लाइट लेट हो जाएगी आज, एंड इट गेट्स लेट और द ट्रेन गेट्स लेट, सो मेनी टाइम्स वी हैव एक्सपीरियंस।
0: इट्स नॉट दैट आई हैव टू से प्लीज ट्रेन लेट हो जाए, आई जस्ट हैव टू से ट्रेन लेट हो जाएगी
1: एंड हो या नहीं हो, यहाँ नहीं कुछ भी होना चाहिए, एंड दैट्स ऑल,
0: एंड देन वी विल थिंक अबाउट इट, अगर ट्रेन लेट होगी तब हम उसके बारे में सोचेंगे,
1: पहले से नहीं, यू नो ये भी एक, अगर नहीं पहुंचे फिर क्या नेक्स्ट,
0: फिर क्या होगा, फिर क्या,
1: That is present. That is living in the present.
0: लेकिन फिर वो प्लानिंग, वो फिर हम कहते हैं कि हमें अपने आप के आगे प्लानिंग,
1: आपकी एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाती है उतनी देर में, आपकी इतनी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है कि उस मोमेंट पे जो राइट डिसीशन है आप ले ही नहीं पाते, आप स्टेबल रहे स्टेशन पहुंचे, फिर अगर ट्रेन चली गई है, देन एट द प्रेजेंट मोमेंट नाउ व्हाट नेक्स्ट, पहले सोच के पहले कुछ कर तो नहीं सकते ना, तो बीइंग इन द प्रेजेंट मींस हर मोमेंट वो सोचें जो उस मोमेंट करना है, हमें लगता है पहले ही सोच के हम टाइम बचा लेंगे और उस टाइम जल्दी डिसीशन ले लेंगे, कई बार पहले सोचने के कारण आप कुछ और डिसीजन ले लेते हैं एंड एक्चुअली एट दैट प्रेजेंट मोमेंट समथिंग एल्स वुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन.
0: दैट्स वेरी ट्रू.
1: बट यू ऑलरेडी क्रिएटेड योर डिसीजन एंड यू क्रिएटेड योर डिसीजन 5 मिनट्स और 50 मिनट्स बैक. Situation has changed, time has changed. You need to take your decision now. लेकिन हम कहते हमने तो पहले ही सोच लिया था.
0: और अब वो क्योंकि वो decision लिया हुआ होता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे. It's so difficult to change that decision.
1: हम सोचते नहीं. उस time हमने already decision ले लिया and we think कि हम बहुत time बचा रहे हैं तो हम तुरंत वो जो past में decision already सोच लिया हम उसको use कर लेते हैं. Creativity means हर moment को देखते हुए, क्योंकि सिचुएशंस हर चीज मोमेंट टू मोमेंट चेंज हो रही है. मैं मेंटली इतना ऑक्यूपाइड हूं कि मुझे सोल्यूशन सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देता. ओनली इफ आई क्रिएट वन थॉट कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए एक्यूरेट हो रहा है, अगर मेरी ट्रेन मिस हुई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें भी मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा है. डजंट मीन गो लेट फ्रॉम हाउस फॉर द स्टेशन. आप अपना हर चीज
0: चेकिंग तो करनी पड़ेगी.
1: पहले आप अपना हर चीज प्लान एक्यूरेटली करो, टाइम पर पहुंचो. लेकिन अगर वो निकल गई है, नाउ व्हाट? नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज सम अदर ऑप्शन. एवरी मोमेंट ध्यान ये रखना, ट्रेन छूट गई कोई बात नहीं, ये तो ना छूट जाए ना, यही छूट जाता है, यही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है.
0: वेरी ट्रू. तो समवेयर वो जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था वो अब समझ में आया कि वो मेरी अपनी क्रिएशन थी. सो इधर आई क्रिएट स्ट्रेस और आई क्रिएट हैप्पीनेस. What is it you would like to create? Again, it's amazing how this journey goes, you know. You start feeling so empowered and relaxed suddenly. कि सब कुछ जो हो रहा है उसके होते हुए भी मैं जो हूँ वो नॉर्मल हूँ. थैंक यू सो मच. शांति, आपके पास कोई सवाल है? हो सकता है कि कई बार क्योंकि डिस्कशन हो रहा होता है कुछ सिचुएशंस हम ना ले पा रहे हो. आप सामने रखिए ऐसी सिचुएशंस जहां आपको लगता है कि आपका चेंज बिलीफ सिस्टम नहीं एग्जिस्ट कर पाता, मतलब वही बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है और आप नहीं चेंज कर पा रहे, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, या तो फोन पर या फिर ईमेल पर. हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. आज इतना ही, आगे भी बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होगी. ओम शांति.

ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

जिस प्रकार ख्याल ठुमरी रुबत तराना इत्यादि आप सुनते हैं, वैसा ही ये एक और प्रकार है। इसे चतुरंग कहते हैं। चार अंगों का इसमें समावेश है। राग मिश्र खमाज का आधार लिया है।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: थापी, मैं सोचती थी कि अपन कबड्डी की टीम बना ली।
3: तू पहलवान बनना, पहलवान जम।
4: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वड़िंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारियां नाल सजी फिल्म रिलीज होन जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
5: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
6: सत श्री अकाल, इश्क बॉय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: दिन भर दे कम्मा कारा च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिन च भी तुहाडे आपणियां दा साथ नहीं पाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस कर।
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: थापी, मैं सोचती सी के अपन कबड्डी दी टीम बना ली।
5: तू पहलवान बनना, पहलवान जम।
4: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनेन चौहान ते होर बहुत सारे सितारिया नाल सजी फिल्म रिलीज होन जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: हांजी। दिवाली रोशनी का त्योहार तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद रिवाजों के रंग खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी चना मसाला पालक पनीर किचन किंग दाल मसाला चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ IME एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02 9063 1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

1674 AM और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानूं चाहे जिथे भी लै जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवें वाले दिनों च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस कर।
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।